0: ये है लाइका रेडियो।
1: श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके वार्मली इनवाइट्स यू टू रथ यात्रा 2026, अ डिवाइन सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। सैटरडे 18 जुलाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नवनाथ सेंटर हीज UB3 1AR में भजन, आरती, सैक्रेड रथ पुलिंग और प्रसाद का लाभ जरूर ले। इवेंट फ्री है लेकिन

0: Breaker Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
3: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
3: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
3: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
0: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पत्सियों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंच, मन्ने धर्म सेती संबंध।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच्छ मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन्हों पाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वड्याई।

जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान।

0: basmati rice.
1: Disha rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kachha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Canton Road. Disha rice, come down and taste the difference.
2: आ सप्टेम्बर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे
3: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर
2: यूरोप ना 3 थी 9 दिवस ना टूर्स
3: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे
2: दर्शन पण अने यूरोप पण
3: सीट्स जल्दी भराई रही छे आज ज बुक करो स्टार टूर साथे
2: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स
3: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन
4: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
5: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
4: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
6: एवरी पेरेंट वांट्स देयर चाइल्ड टू ग्रो अप हेल्थी एचपीवी द ह्यूमन पैपिलोमावायरस is a common infection that most people don't even know they have. However, it can lead to cancer in men and women. The HPV vaccine can stop this and is available for every child from age 12 and offers long-term protection with just one jab. Say yes to cancer prevention. Make an informed choice. Find out more at nhs.uk/HPV. Or contact your school immunizations team.
7: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. 90s throwback plays now.
8: Leica.

0: ATCO food containers are recyclable, reusable and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, ATCO food containers.
0: The perfect food storage solution, ATCO food containers.
2: Position your business for success with Sabici Business Center. We offer flexible warehousing and light industrial units ideal for storage, workshops and growing businesses, plus serviced offices, hot desks and meeting rooms tailored to the way you work. Enjoy flexible terms, convenient parking and half price rent for your first month.
3: For virtual offices, business address registration and more, call 0208 799 7474. Sabici Business Center. Professional, flexible, built for business.
4: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
5: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
9: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
10: Southall Travel, Atoll Protected.
11: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
10: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203 नाउ. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
12: Attention London, the K Furniture flash sale is now on. Enjoy huge discounts on leather and fabric sofas, mattresses, wardrobes and divan sets, with every divan set including a free headboard plus lighting, wall art and mirrors are now less than half price. Immediate delivery available, but hurry, the flash sale ends Monday at 6 p.m. Visit K Furniture in Harrow, Cricklewood or Slough, or shop online at kfurniture.co.uk. K Furniture, where your dream home comes to life.
13: बिजनेस के कार्ड पेमेंट चार्जेस देख के कभी सोचा है,
14: यार मैं कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहा? पता लगाने का एक ही तरीका है, अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट TW Pays को भेजिए और 24 आवर्स में पाइए एक फ्री कंपैरिजन कोड. विजिट twpays.com/laika या कॉल कीजिए 0203129 9840. TW Pays, हर ट्रांजेक्शन पर ज्यादा बचत.
15: Backstage Siblings, first ever UK performance happening on the 9th and 10th of October 2026 at SKLPC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS. Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tour.

0: exclusive radio partner, Leica Radio Network.
1: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
2: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. Tours by coach, Eurostar or flight. We give you the option, you choose what works best for you. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: जिंदगी वहां सैको माइक्रोवेव फूड कंटेनर
1: द वॉइस दैट टचेस एवरी सोल स्टार एक्सप्रेस प्रेजेंट्स हरिहरन्स सोल इंडिया
2: लाइव इन लंदन Experience an unforgettable evening with the legendary Hari Haran.
1: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हस्बंड जी
4: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods, Hayes, from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods, Hayes. Your future in the sun could start right here, 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods. Hayes.
2: Kajal's Couture. For every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
5: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
2: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
5: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
2: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
5: Visit gajalskachor.co.uk
6: Welcome to the jungle.
7: Film बिल्कुल फेक.
6: हमारे फिल्म आर्मी वाली.
8: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
7: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
6: और स्टार कास्ट है
7: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
6: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
7: Watch Welcome to the Jungle in cinemas now.
6: अरे तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
9: किस लिए फिल्म में?
10: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410 साउथहॉल ट्रेवल Atoll protected.
11: Khakra Crunch Bhakri Munch. Chikki Sweet. Papad Beet. Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
12: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra Namkeen Papad Pickles Chikki Pot Meals and much more.
11: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
13: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
14: 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
15: A Leica Radio Classic plays now.

बुकिंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.

0: देखो हर काम ना मोहब्बत से मोहब्बत तक आसानी से सुलझ जाती है यारो. लव इज द आंसर. बस आपको आना चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए. लेट्स डू दिस. टेक यू आउट ऑफ द वर्ल्ड. इट्स योर फर्स्ट फ्राइडे क्रैकर ऑफ द आवर
1: विद रेडियो वैली'स फ्राइडे फायरक्रैकर.
0: It is, of course, the ultimate cracker classic. Your Fry-Yay Firecracker. The original, the OG, with the beautiful Madhuri Dixit on the big parda. Agar aapko ginti nahi aati hai na, gaane ke zariye bahut logo ne sikha hai. Ek, do, teen. Let's enjoy this one together. Your Fry-Yay Firecracker of the hour.

0: देखो नैना ऐसी चीज है ना बंदे को जिंदगी में या तो आगे लेके जा सकती है या पूरा गिरा के पीछे छोड़ जाती है। अभी मेरी पड़ोसन का ही ले लो, मैंने उसको इशारा किया कि यार मैं रियली अपसेट हूँ, आज तूने मुझे हेलो क्यों नहीं किया, मुझे एक्नॉलेज नहीं किया, और वो ना बच्चों की तरह मेरे को शक्लें बना रही है, अपनी टेढ़ी टेढ़ी आंखें बना के शक्लें बना रही है। सोचो मैं यहाँ अपसेट हो रही हूँ एंड शी इज पुलिंग फेसेस एट मी, बट देन शी टोल्ड मी इट्स बिकॉज़ आई रिमाइंड हर ऑफ हर वेरी यंग 21 ईयर ओल्ड नीस। तो मैं सोच रही हूँ अभी उसको माफी दे दूँ, क्या ख्याल है, दे दूँ?
1: With Radio Wally's roller coaster, only on Leica Radio.
0: But ye sari baatein chalti rahegi because right now we need to see what is happening around the globe. Century Radio Wally Stylist squeezing one last big track. Milte hain news ke baad.

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
2: Next, the biggest romantic songs are up next on Love Sound.
4: Like her.
2: Flashing back with Radio Wally's Fry Yay Firecracker.

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो यही कहीं हो

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: Location, location, location.
1: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
0: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
1: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
0: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
1: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
0: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
1: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
0: High appreciation.
1: In Dubai.
2: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है। ओ मूवी जिन्हें सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता।
3: की कह रहे हो?
2: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
3: की कह रहे हो?
4: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4 जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
3: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
2: This 26 June, Carry On Jatta 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।

0: planned it. You asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
1: Latuke halone nandala.
0: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
2: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
3: The greatest Asian love songs across the Leica Radio Network.